मैं एक किसान दा पुत हां, जट जो मुंह कह दियो करके विखा देंदा, चंगिया ना चंगा ए बुरिया नू मत सिखा देंदा, जो करके

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होना जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका।
1: सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंदर पलमल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे इक शायर ने उहनां दी धी है सिमी सोतरा जी ओह दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी होई इक जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोतरा जी जी आयां
2: लेके असी दिल विच आए आ जनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी दिल

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात लेंदे एहो खाब दिलिए, हक लैके असी

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

0: दोस्तों के करम याद आने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे।
1: वाह जी,
0: शुक्र है उनका दामन में असुर हुआ, शुक्र है उनका दामन मयसूर हुआ, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे। रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। आगे भाई,
1: जी
0: मैंने पूछा के मुझसे मोहब्बत है क्या,

0: गए। एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए। एक लम्हे, शमी भाई जी सुने हो गल?
1: जी
2: जी
0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाने लगे।
1: क्या बात है,
0: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहना, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की, रात से सानू सोने की फुर्सत कितने है?
1: जी
0: रात में
2: जी
0: हम

0: लगे
1: क्या बात है।
0: रोते रोते हम मुस्कुराने लगे।
1: बात ही
0: लगेगा नहीं वो काल काल दी जिंदगी बारे पूछता भी काल नु की होएगा।
1: जी
0: बोलेगा ना

हो जमला जट मु बहल ते जमला जट मु बहल ते आलो कुछ फरमांदा अगत पिया पुत्र मेरे ओ मैं हुन नहीं गांदा जमला जट मु बहल ते हो जमला जट मु बहल ते। सत श्री अकाल दोस्तो, मैं तुहाडा अपना काशीनाथ, तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़।

0: जीवा पियो।
1: ओहो बहुत ही भावुक माहौल हो गया जी, कमाना हो गया मोडे ते से रखे कायनात सती है, बहुत ही खूब।
0: ओदला भाई जी वास्ते स्पेशल सी है
1: जी, वाह जी वाह,
0: क्योंकि मेरा क्योंकि जज्बातां नाल जुड़दे कलम इन्हां दी, फिर जो लिखदी ओह जुड़दी भी जज्बातां नाल। ते ठीक है बाबे, मैं माफी चाहना, मैं थोड़े हाजरी लवा चलिया वा।
1: शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत।
0: अपने अपने अपने दिल दा ते ओजला भाई जी दे सैनी भाई ते जस्सी भाई सारिया दा हाल सुना चलिया।
1: सतनाम सिंह जानिया चाल होरां ने गल फड़ ली है, कहिंदे मुकद्दर वीर हुण मोढा ना हिला दिओ, फिर कहेगा कि ओह नहीं कहिंदी। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत।
0: ठीक है, सत श्री अकाल बाबे, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, लव यू सारे सज्जना जी, सब सज्जना लव यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी दोस्तों, क्या बता क्या ओ नहीं कहती, वाह वाह, बाकमाल बाकमाल पेशकारी औलख साहब, मोहब्बत जिंदाबाद है जी, क्या बता। ते इस खूबसूरत माहौल नूं जारी रखते हुए, क्योंकि अज आप साउंड महीने दी गल्लां बातां कर रहे हैं, ते साउंड जिहड़ा साउंड नहीं दिंदा ते बहुत ही कमाल है। इहदे नाल ही कवि दरबार जिहड़ा शब्द लग गया ना, इह भी बड़ा कमाल है। ते आपां चलदे हां UAE तों दुबई चलदे हां। बई जी बख्शी साहब, मोहम्मद साहब साडे नाल मौजूद ने, बहुत ही सत्कार ते बहुत कह लो स्वागत जी। आयो जनाब, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, आदाब।
2: सत श्री अकाल वीर शमी जी, ते इस वक्त जो मौजूदा भैन भरा तशरीफ फरमा, सारिया नु सत श्री अकाल। रेडियो दुआबा हमेशा चढ़दी कला दे विच रहे, दिली दुआवा।
1: शुक्रिया
2: भाई, बहुत ही क्या बात है, अपने हालिया भरा है, बहुत ही सोहनी जिहड़ी हैगी कारगुजारी, बहुत ही खूबसूरत कारगुजारी दिखाई इन्होंने
1: जी,
2: ते बड़े रोशन ख्यालां दा इजहार भी कीता
1: जी जी।
2: बिल्कुल, प्रोग्राम तुहाडा बड़ा बाकमाल हुंदा शमी वीर जी, इसे तरह डटे रहो, साडियां दिली दुआवा हमेशा जिहड़ियां हैगियां।
1: शुक्रिया जी,
2: ते ते मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लाना, मैं बस एक तो सावन का अज रखा हुआ टॉपिक, एक थोड़ा जा सावन तो बाहर पाऊंगा है, एक सावन दे उत्ते हैगा, छोटा छोटा दो दो लाइना का।
1: ठीक है जी, इरशाद,
2: तुहाडी इजाजत होवे तो मैं गुणगुना देना जी।
1: इरशाद जी, इरशाद।

0: मेरे मेरे प्यारे दार रब निगमा हुवे पूरे वाली बाहुवे सहा बिच साहुवे मेरे मेरे प्यारे दार रब निगमा हुवे सोने मुख तो पता जावे हिल जाओ एहो जा नजारा मित्रो तेरी जिंदगी चिका चिका से मिलदा एहो जा नजारा मित्रो तेरी जिंदगी से कदे कदे मिला। थैंक यू सो मच।
1: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, क्या बता।
0: शुक्रिया
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान दी दा गीत जेड़ा है तो डे मुंह कहिंदे बड़ा सजदा तुहाडी आवाज दे विच सावन की रातों में, ए कहिंदे जरूर सुनाओ जी माड़ा दो बोल इहदे।
0: जनाब नुसरत फतेह अली खान दी वैसे मैं फरमाइश पूरी कर देना पर यह सोंग नहीं दूसरा सोंग आ जे ओदी बात दे विच भी तुसी सुनना चाहुंदे तो मैं दो को लाइना सुना सकदा जी। इहदी मैं तैयारी नहीं कीती, जिहदी फरमाइश अगली बारी मैं जरूर यह सुना देवांगा।
1: जरूर जरूर जी जी जी जी, ठीक है जी।

0: बहुत खूब, बहुत खूब जी, क्या बताओ, व्हाट अ ब्यूटी, बहुत खूब, बहुत खूब जी, नियारा आ गया जी, वाह जी वाह, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद जी, शुक्रिया जी,
1: मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, थैंक यू,
0: शुक्रिया जी। सो दोस्तों अपने नाल यूएई तो मोहम्मद साहब जुड़े ते इस वेले दोस्तों अपने नाल जुड़ चुके ने डॉक्टर अमरजीत अनीस जी तलवाड़ा तो स्वागत करते डॉक्टर साहब जी, आयां नूं जी खुश आमदीद, हैप्पी सावन।
2: बहुत बहुत शुक्रिया शमी वीर जी, सब तो पहला तो मैं तुहाडे दोबर रेडियो राही सारे श्रोतियां नूं, देश विदेशां विच बसदे श्रोतियां नूं ए सावन जो कवि दरबार तुसीं स्टार्ट कीता है और सावन महीने दी बहुत बहुत मुबारकां
0: जी, शुक्रिया।
2: और मैं आस करदा है कि हमेशा चढ़दी कला च रहे दोबा रेडियो
0: जी,
2: और असी मेरे नाल तां अज सब तो वड्डी गल ए वी है कि मेरे नाल मेरे एक छोटे वीर, मेरे गुआंढी बिलकुल सामने मास्टर जी, मास्टर चंद्र शेखर भी जुड़ गए ने, नाल ही है मेरे बैठे,
0: ओह
2: भी बहुत बहुत अच्छा लिखते ने,
0: क्या बात।
2: और मैं उन्होंने कवितावां पढ़िया, मैं तो वेख के बड़ा हैरान होया, पर मैं अज मैं तुहानू समर जी समी दे कवि दरबार दे नाल दुआबा रेडियो जिहड़ा कवि दरबार चल रहा है अज मैं उन्होंने तुहानू रूबरू करावांगा, दो मिनट उन्होंने एक मिनट मैं उन्होंने गल रूबरू करवाना चाहुंदा आ। चंद्र शेखर जी मास्टर जी साडे तुहाडे अपने किते दे मालक ने, चंद्र शेखर जी आ करो गल
0: जी।
3: सत्याल जी,
0: सत श्रीकाल जी, चंद्र शेखर जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत खुशी हुई जी, क्या बता जी, आया नु जी,
3: धन्यवाद जी। मैं एक छोटी जी अपनी कविता हैगी मेरी तुहाडे सामने पेश करना चाहना जी, उम्मीद है कि तुहानू पसंद आएगी।
0: इरशाद जी जरूर इरशाद।
3: मेरी कविता का शीर्षक है मेरी सोच।
0: आहा, क्या बता,
3: थोड़ी जी कलम ना छेड़छाड़ कीती है, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी जी।
0: जी इरशाद जी
3: जी, बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नो हाथ नहीं है पाउण देंदी
0: जी,
3: बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नो हाथ नहीं है पाउण देंदी, तमाम उमर जगाया है इस मैनू, सुपने लैण ले भी मैनू नहीं ये सौण देंदी।
0: ओहो, क्या बता, सुपने लैण ले भी मैनू नहीं सौण देंदी, बहुत खूब
3: जी। अगे है जी, आफताब वांग चाह मैं खुद नू रोशनाना
0: जी,
3: आफताब वांग चाह मैं खुद नू रोशनाना रोशनावा, चाननी रात च भी मैनू नहीं ये नहाउण देंदी।
0: ओहो, बहुत खूब जी, बहुत
3: बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नू हाथ नहीं है पाउण देंदी।
0: क्या बता।
3: अगे है जी,
0: जी
3: की रखा मैं वैर विरोध इस नाल,
0: ठीक है जी,
3: की रखा मैं वैर विरोध इस नाल, ना खुल के मेरे नाल, ना खुल के रुसे मेरे नाल
0: जी,
3: ना मैनू ये मनाउण देंदी।
0: ओहो,
3: बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नू हाथ नहीं है पाउण देंदी।
0: वाह जी वाह।
3: अगे जी, हर हरकत ते ए मेरी घात लाई रखे
0: जी,
3: हर हरकत ते ए मेरी घात लाई रखे, ना खुद हसे जी पर, ना मैनू हसाउण देंदी। बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नू हाथ नहीं है पाउण देंदी।
0: क्या बात।
2: हेलो
0: जी डॉक्टर साहब, क्या बता, मैं कहना जी बहुत खूब, बहुत खूब, मैं कहना जी कमाला हो गए जी डॉक्टर साहब जी।
2: हेलो,
0: हाँ जी डॉक्टर साहब, आ रही आवाज जी।
2: हेलो,
0: हाँ जी डॉक्टर साहब,
2: आवाज लगता संपर्क छुटता
0: पिया, नहीं आ रही जी, थोड़ी आवाज आ रही है जी डॉक्टर साहब
3: जी। हर हरकत ते ए मेरी घात लाई रखे
0: जी,
3: हर हरकत ते ए मेरी घात लाई रखे, ना खुद हसे जी पर, ना मैनू हसाउण देंदी।
0: बहुत खूब।
3: बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नू हाथ नहीं है पाउण देंदी। मलूक जेहे विचारा मेरिया नाल
0: जी,
3: मलूक जेहे विचारा मेरिया नाल, करी जावे मतरिया व्यवहार एवें। मलूक जेहे विचारा मेरिया नाल, करी जावे मतरिया व्यवहार एवें, ना खुद दा ए सिरनामा बदले, ना मैनू नवा आलना पाउण देंदी।
0: क्या बात जी।
3: बेअदबी क्यों करी जावे सोच मेरी, मैनू कलम नू हाथ नहीं है पाउण देंदी
0: जी।
3: अगे जी, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ,
0: ਓਹੋ
3: ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਝੁੰਡ ਕੱਢੇ, ਦੂਜਾ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੀ ਏ ਪਾਉਣ
0: ਦਿੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ।
3: ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਪਈ ਤਰੇਲ ਤੁਪ ਕੇ ਵਾਂਗ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ
0: ਜੀ,
3: ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਪਈ ਤਰੇਲ ਤੁਪ ਕੇ ਵਾਂਗ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ
0: ਜੀ,
3: ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚ ਕਿਉਂ ਨੀ ਫਿਰ ਸਮਾਉਣ ਦਿੰਦੀ।
0: ਆਹਾ,
3: ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਏ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਰਚਨਾ
2: ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਯਾਰ।
0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟ ਆ ਬਿਊਟੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ।
2: ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ।
0: ਆਹਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ
2: ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ
0: ਜੀ
2: ਕੁਛ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਆ।
0: ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ,
2: ਯਾਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਵਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
0: ਜੀ।
2: ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
0: ਜੀ,
2: ਲੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਂਗ ਨਿਖਾਰ ਦਿਆਂ, ਰੁੱਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ,
0: ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
2: ਮਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਦ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਮਨ ਕਲਮ ਸੁਹਾ ਜਾਵੇ, ਗਮ ਦਾ ਸੇਕ ਸੁਹਾਵੇ ਕਲਮ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਿਰਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ, ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਜਾ

0: ओ दिन दिल मिलने नू कर दाए, दिल मिलने नू कर दाए, होमी वर दाए रुक रुक के। भाजी नवी बोली है, शब्द चेंज है बस
1: जी। नवी वर दाए रुक रुक के जी, प्रोपर नहीं आ रहा, मतलब रुक रुक के आ रहा है, जबरदस्त
0: पढ़ता सी, हुण मी वरदा है रुक रुक के।
1: ठीक है जी,
0: ओ मी वरदा है रुक रुक के।

0: तार छा चुक चुक के, ओ मारे तार छा चुक चुक के।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: धन्यवाद भाजी
1: जी।
0: ओ बदल काले काले चढ़ आए, बदल काले काले चढ़ आए, ओ गुस्से बिच इंज गरजन, ज्यो शमी जीना लड़ आए। ओ ज्यो माये नाले लड़ आए, ओ आया सोन दा महीना आए, आया सोन दा महीना आए, ओ जख मा

0: से कैसे बनवाना थे मोर। ओ सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे जुमे ऐसे बनवाना थे मोर। राम
1: जेडी अपनी रचनावां
0: नूं बुढ़ाए ये।

पुरवैया के आगे चले ना कोई जो और जिया रे जू में ऐसे जैसे बनवाना थे मोर। ओ सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे जू में ऐसे जैसे बनवाना थे मोर। मजवा करे क्या जाने हम कोई सारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मज करे क्या जाने हम कोई सारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तो

0: मैनू थोड़ी नौकरी ना मंजूर है, फिट लाण ता दियोगा तुसा नू जहान जी। हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी, हादा नारा मारदा। थोड़ा वैर है गोविंद सिंह नाल जी, ओदे नाल लड़ो बाण के मिशाल जी। मारो ओनू पावे कर के हलाल जी, एना निर्दोषियां दी कातो लेंदे जान जी। हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी, हादा नारा मारदा। कहंदा थोड़ी नौकरी नू मारी लत है, मेरे विच इस्लामिक सत है। बलवीर कौर लिख दिता सच है, रामगढ़ सीवियां भी है कदरदान जी। हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी, हादा नारा मारदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वीर कौर सीविया जी तो बाद हुण मैं पटियाला वासी साडी शायरा गायिका निर्मला गर्ग जी नू सदा देंगा। ओ अपनी रचना जिहड़ी लेके हाजिर हो रहे ने, ओ कह रहे ने बड़ा ही औखा हुंदा है, देश तो कौम तो सरबंस वारना बहुत औखा हुंदा है, ते इतिहास सिरजना उस नू भी वड्डा काम हुंदा है। ते निर्मला गर्ग जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी छाम दे विच निघा स्वागत है।
2: मखमल

पर रेडियो दे प्यारे श्रोतियो सिमी सोत्रा जी दी इस गीत दे नाल ही साडा प्रोग्राम गौंदी शाम इत्थे समाप्त हुंदा है। ते समाप्ति तो पहला मैं सारे श्रोतियां दा शायरां दा गीतकारां दा गायकां दा बहुत बहुत धन्नवादियां जिन्होंने साडे इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा चलाउण दे विच साडा सहयोग कीता है। अंत विच हरवंशियो वलों सारिआं नूं आदाब नमस्कार सति श्री अकाल कुदरत कैर करे। अगले हफ्ते फिर मिलदे आं, तद तक लई दिओ आग्या अलविदा आमीन।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास कर

मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मिल मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे स्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

आख दे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसणाए बन के कटामा असी धरती बसणाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने मान

देश चो भुख मिटाई, हां खून पसीना डोल के अपना, देश चो भुख मिटाई। सदियां तो परेस दी किस्मत,

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पा दिया सिरिया नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पा दिया सिरिया नप के सौंदा। अच हंजू केर रोवे, अच हंजू केर रोवे अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तों लियाउणा पैना, इनकलाब दा पुत्तरो लियाउणा पैना। सच कहिंदे ने सियाणे झट,

के सुटते प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए, जदो समय दा चक्कर चलदा ए, जदो समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा,

मंजिल सारी कर लेनी एक दिन आपां दोवां। मैं तेरे हासे आच हसां, तेरे रोने आच रोवां। नी तू ऐसी मन लगी, दिल नावाज गई ठगी।